0: यसो रेकर्ड गर्न सक्छु
1: रेली माई रेली माई रेली माई माया
2: बहुत सुन्दर गुवाएछ।